एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार स्यांग्सा।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: गिग फाइबर एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन
2: गोदावरी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूत्र

0: होस्पिटलको शाखा कार्यालय कान्तिपुर स्माइल डेन्टल केयर वालिङमा सेवाली नहुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ।
1: सम्पर्क कान्तिपुर स्माइल डेन्टल केयर वालिङ बजार मल्ल फार्मेसी अगाडि।
0: मोबाइल 9847216600।

मैं हूँ जोगिंदर, हे काले जोगिंदर, तेरा राम रे जोगिंदर, हे पानी ईमानदार प्रामिक जोगिंदर, मैं हूँ जोगिंदर।

चुर्रे। मैं हूँ जोगिंदर, हे काले जोगिंदर, तर राम जोगिंदर, हे पानी इमा।